मैंने कहा था एक औरत तबाह करेगी इस कार को, जाओ अपनी आंखों से देख लो। जो साथी थे आज दुश्मन बन चुके हैं, तबाही से पहले उन्हें रोक लो।